0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

जी समय प्रोग्राम रोशन सुबह में असां खां सवाल पुछियो आहे त गर्मियुनि जूं जेके चिटियूं थींदियूं आहिनि उन जा नाला ॿुधायो ऐं केतिरियूं चिटियूं निसरी चुकियूं आहिनि ऐं केतिरियूं बाक़ी रहियल आहिनि। तव्हां असांखे ॿुधाए सघो था मोबाइल जे SMS ज़रिए बि। मोबाइल ते SMS ज़रिए अव्हां खे मोकिलण जो आसान तरीक़ो मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो, उते LRK लिखी स्पेस ॾींदो, पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ जो नालो, सही जवाब लिखी करे अव्हां सेंड कंदव 888 ते। ऐं तव्हां असांजे फेसबुक जी GFM88 जी ID ते बि तव्हां असांजे फेसबुक ते बि पंहिंजा नाला मोकिले सघो था सवाल जो सही जवाब बि, ऐं स्टूडियो जे मोबाइल नंबर ते कॉल करे बि पंहिंजे सवाल जो सही जवाब ॿुधाए सघो था। असांजो नंबर आहे 0332-1322-88। ऐं साईं मुंहिंजा कुझु दोस्तनि जा नाला जिन असांखे सवाल जा सही जवाब ॾिना आहिनि, ऐं सवाल जो सही जवाब असांखे अव्हांखे आख़िर में ॿुधाईंदासीं, पर दोस्तनि जा नाला अव्हां ताईं ज़रूर पहुचाईंदासीं जो नाला घणा आहिनि। अब्दुल गफ़ूर जतोई ऐं अली ख़ान नारे जो, लखमीर नारे जो ॻोठु अली हसन जतोई खां, ऐं हाजी सोराब मंगरियो, नज़र मोहम्मद मंगरियो ऐं फरहान अली मंगरियो ॻोठु सचिरणो मंगरियो लॻे बकापुर खां, फ़क़ीर महरम अली जतोई ॻोठु आगा ख़ान जतोई खां, इमदाद अली जतोई, अब्दुल ख़ालिक जतोई, मुबशर जतोई, फारूक हैदर जतोई ऐं किफ़ायत अल्लाह जतोई दादू खां, हाफिज़ मुनीर खुसो लाड़काणे खां, अमीन मरी हाले पोटरा स्टाप खां, ऐं चनेसर बिहण आज़ाद बिहण मोरे खां। दोस्तनि जी वॾी महिरबानी। ऐं साईं मुंहिंजा

0: खूबसूरती है जो असल राज। सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252578 6।
4: जी हाँ 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
4: ऐं हां गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252576।
4: जी हां 2315525786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

जी साईं मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह में असांजे सवाल जो जेको सही जवाब हुयो त काफ़ी मौसम जेको आहे सो गर्मीअ में चिटरा थींदियूं आहिनि, जेके चिटरा ख़तमु थी चुकियूं आहिनि, जेके निसरी चुकियूं आहिनि, जंहिंमें ड्रब, तिर, लहो ऐं बाक़ी रहियल कांह, सर, ॿूड़ो जंहिंखे चऊं, नाड़ो आहे, काफ़ी चिटूं रहियल आहिनि, कुझु गुज़री चुकियूं आहिनि। इहे गर्मीअ जूं निशानियूं हूंदियूं आहिनि ऐं उन में कुझु दोस्त नाला बि कुझु असां वरितासीं, कुझु नाला रहियल आहिनि अवां ताईं पहुचाईंदासीं, जंहिंमें दोस्त आहिनि आसिफ नवाज़, महर चक कचे खां, हाफिज़ मोहम्मद हनीफ़ रिंद, प्यारो रिंद, ॻोठ जीअंद रिंद जेकाबाद खां, महबूब शर, रिज़वान अली, इमरान अली शर ऐं नंढड़ी उज़मा ऐं असमा शर ठरी मीरवाह खां, ऐं रियाज़ जरवार ॻोठ आलम खान जरवार खां, ऐं मीर खादिम हुसैन मलिक रोहिड़ी सखर खां, ऐं मोहम्मद शरीफ़ छुटो, नादर अली छुटो, दरेजी बलोचिस्तान खां, आसिफ पहावर, बशीर पहावर उंडड़ चौक खां, ॻोठ मोलड़े माशी खां, लॻे बकाबुर खां, ज़मीर हुसैन सोलंगी, मुख़्तियार अली, ज़हीरबा सोलंगी, नंढड़ो वफ़ा हुसैन सोलंगी, ॻोठ कंगन खां, गुलाब खान कुंभर, शोएब अली ऐं गुलाम रसूल कुंभर, ॻोठ अहमद खान लाशारी खां, नियाज़ अली लाशारी, नंढड़ो शाहज़ेब लाशारी, ॻोठ हसू जतोइन खां, मोहम्मद मूसा जतोई, यार मोहम्मद नसरुल्ला जतोई, ॻोठ मोहम्मद कासिम चांडियो खां, अली अकबर चांडियो, मोहसिन अकबर, अहसन अकबर, फहद अकबर, अहद अकबर ऐं शादाब चांडियो, ऐं ॻोठ छुटो मक्सी लॻे कंगन खां, सिकंदर अली मक्सी, अकबर खान मक्सी, यारमंद करोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां, फौजी इरशाद अली महेसर।

अमेरिका ईरान ते हमला तेज करे छॾिया अहवाज़ बंदरगाह अब्बास करमा ने कशम में धमाका रूसी खबरू इदारे मूजिब ईरान कशम मथां उॾाम कंदड़ अमेरिकी जहाज किराए विधो करमान में टाइम हाक मिज़ाइल खे फिज़ा में बि तबाह करे छॾियो अमेरिकी फौज जे सेंट्रल कमांड जो चवण आहे त ईरान ख़िलाफ़ 13 ॾींहं वारी कार्रवाई मुकमिल कई वई आहे हमलनि जो मक़सदु पासदार इनकलाब तरफ़ा तिजारती जहाज़नि ते हमले जे ख़तरे खे घटि करणु आहे।

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त लॻे थो त ईरान खे घणी तकलीफ़ नाहे पहुती। हाणे हमलनि जी शिदत वधाईंदासीं ऐं ऑपरेशन खां वॾा हमला कया वेंदा। तिजारती जहाज़नि जो नुक़सान ऐं जंग ते थींदड़ ख़र्च ईरान जे मंझंदि सासन मां काटी वेंदी। सऊदी अरब सां सिविल एटमी मुआदो मुकमिल तौर इब्राहिमी मुआदनि में सऊदी जी शमूलियत सां मशरूत आहे। अमेरिका सऊदी सिविल एटमी मुआदो रुगो गैर फ़ौजी इस्तेमाल लाइ आहे। स्कूल एजुकेशन खाते जे डीजी मॉनिटरिंग ऑफिस में 1,92,00,000 खां वधीक हिक करप्शन जो इंकशाफ़। ऑडिटर जनरल ऑडिट रिपोर्ट कार्रवाई लाइ सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी खाते ॾांहुं उमाणे छॾी। ऑडिट में ॿिनि ऑफिसरनि खे 9,29,000 रुपया एग्ज़ेक्टिव अलाउंस, 28,25,000 रुपियनि जी अलाउंस में 9,33,000 रुपियनि जी पघार ऐं अलाउंस अदायगियुनि ते एतिराज़ कयो वियो। ऑफिस जे मुंतकिलीअ ते 39,98,000 बिल्डिंग जे भाड़े जी मद में सवा 53,00,000 पेट्रोल स्टेशनरी प्रिंटिंग ऐं ट्रांसपोर्ट ख़र्चनि में माली ज़ाब्तनि जी भञकड़ी बाबति ऑडिट में निशानदेही। आईटी सामान मशीनरी ऐं फर्नीचर जी मरम्मत जे ख़र्चनि बाबति बि ऑडिट रिपोर्ट में एतिराज़ शामिल।

खाणोट वासी पोरेत नौजवान कंडियारो भरसां फुर मज़ाहमत ते कतल वारसन जो मंज़ूर आबाद में इंडस हाईवे ते धरणो ट्रैफिक मुअत्तल वारसन चयो त हथियारबंदनि ट्रक रोके नौजवान एजाज़ खोसो खे गोरियूं हणी कतल कयो नौजवान जा कातिल गिरफ़्तार करे इंसाफ़ कयो वञे।

सूमबाड़ी अगवा खां पोइ ज़ियाती जो निशानो बणाए बेदर्दीअ सां क़तल जवाबदार पुलिस जे मुबैना मुक़ाबले में मारिजी वियो। क्यामाड़ी में समुंड वेझो ॿोड़नि मां दुआ धीअ उमर जो लाश मिलियो। ॿाड़ीअ खे मुबैना ज़ियादतीअ जो निशानो बणाए क़तल कंदड़ जवाबदार मुक़ाबले में मारिजी वियो। डीआईजी ॾखण चयो आहे त सीसीटीवी फुटेज जी मदद सां गिरफ़्तारी लाइ पहुतल पुलिस टीम ते जवाबदार फायरिंग कई, जवाबी फायरिंग में मारिजी वियो। शुरूआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ॿाड़ीअ सां ज़ियादतीअ जी तसदीक थी आहे।

हिकु वण सिंध अमड़ जे नाव केटीएन न्यूज ऐं कावस जे वण पोखण वारे सॾ खे भरपूर मोट सिंध खे मौसमियाती तब्दीली जे असरनि खां बचाइण लाइ वण लॻाइण वारे सॾ ते सिंध वासियुनि ऐलानियल तारीख़ खां अॻी वण लॻाइण शुरू करे छॾिया। केटीएन न्यूज ऐं कावस पारां 24 खां 31 जुलाई 2026 ताईं वण पोखण जो सॾु ॾिनल।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।
2: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं
1: GAFM
0: 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GAFM 90.4।

İstanbul'da ve GFM Etiyet Network. ए प्रोग्राम आ है म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती सान करे मा तवाजो पानी मेजबान गुलाब खान बेण सब जो मिठा सही केड़ा हाल नवा जा ठीक है तो सही है आवाज उम्मीद तरफ करे तवा सब नी मुजन बारे ने भेनर ना बिल्कुल खैर खैरत के हुंदी असन दुआओं तवा सा हर वक्त हर हंद गर गर हुंदी है हमेशा वांग दुआया हुंदे अल्लाह ताला सदा तवा के खुश ऐं आबाद रखे कॾहिं बि ॾुखियो ॾींहुं ॾिसो सदा ई खिलंदा मुस्कराईंदा रहो ख़ुशियूं अव्हां जे वेझो ऐं ॾुख अव्हां खां काफ़ी दूर हुजनि।

त वञा वेठा थियनि प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती हर जुमे जे ॾींहुं ऑन एयर कयो वेंदो आहे 11 वॻे खां वठी 1 वॻे ताईं, जेको जी एफ एम नेटवर्क तां ऑन एयर थींदो आहे, जंहिंमें असां सखर, लाड़काणो, मीरपुर ख़ासि, मटियारी, मातली, मेहरापुर ऐं सकरंड ऐं मोरो जा बहितरीन बहितरीन प्यारा प्यारा लिसनर्स गॾु हूंदा आहिनि। हिन प्रोग्राम में हूंदियूं मिठियूं मिठियूं ॻाल्हियूं, अवां पारां मोकिलियल प्यार भरिया मैसेजिस ऐं तव्हांजे पसंद जी चूंड मूसीकी। त मुंहिंजा मिठा, ज़िंदगी में हर माण्हू कामयाबी हासिल करण त चाहे थो, पर कामयाबी सिर्फ़ ख़्वाहिश सां न पर मुनज़्ज़िम मनसूबाबंदी, महिनत ऐं मुस्तक़िल मिज़ाजीअ सां हासिल थींदी आहे। जेकॾहिं असां मां को बि कम बिना रिथाबंदी ऐं बेतरतीबी अंदाज़ सां कंदो त उन जो नतीजो अक्सर इत्मिनान बख़्श न आहे निकरंदो। सोचे ॾिसो, जेकॾहिं हिकु हारी सही वक़्त ते ॿिज न पोखे, पाणी ऐं भाण जो मुनासिब बंदोबस्त न करे, त छा हू सुठे फसल जी उमेद रखे सघे थो? बिल्कुल बि न। साॻी तरह ज़िंदगीअ जे हर शुबे में तरतीब, वक़्त जी पाबंदी ऐं ज़िमेवारी कामयाबी जो बुनियाद आहे। मुनज़िम अंदाज़ में कमु करण सां न रुगो वक़्त जी बचति थींदी आहे, पर कम जे मयार में बि बहितरी ईंदी आहे। इंसान परेशानियुनि खां बचंदो आहे, पंहिंजा मक़सद आसानीअ सां हासिल थी वेंदा अथसि, हर क़दम सोचे समझी खणंदो आहे। जॾहिं त बेतरतीबी, सुस्ती ऐं लापरवाही असांखे नाकामी, मायूसी ऐं वक़्त जे ज़ाया थियण ॾांहुं वठी वेंदो आहे। तंहिं करे अचो त अॼु खां वठी उहो अज़म करियूं त हर कम शुरू करण खां अॻु उन जी सही रिथाबंदी कंदासीं, वक़्त जी अहमियत खे समझंदासीं ऐं पंहिंजूं ज़िमेवारियूं ईमानदारीअ सां निभाईंदासीं। यादि रखो मुंहिंजा मिठा साईं, त मुनज़िम ज़िंदगी न रुगो कामयाबी आणे थी पर इंसान जी शख़्सियत खे बि बहितर बणाए थी।

प्रोग्राम में दोस्तों जा मैसेजेस भी शामिल कंदा हलूं ऐं असां गॾु आहे असांजो प्यारो भाउ आई अब्दुल रहीम फ्राम सखर अदा अब्दुल रहीम कहिड़ा हाल नवां जा ठीकु आहियो त भई सही आहे अवां जूं मुंहिंजे रकमी अरब करीम तव्हां सभिनी मुंहिंजनि भाइरनि ऐं भेनरुनि आख़िर ख़िदत कई हूंदी ऐं तव्हां जे लाइ स्पेशली असां खोड़ सारी दुआऊं कंदा आहियूं छो जो तव्हां असांजे प्रोग्राम में हमेशा शामिल थींदा आहियो मोहबत भरिया मैसेज कंदा आहियो ऐं मौला ख़ुशि रखंदो तव्हांखे। अदा जन चवनि था अस्सलाम वालेकुम अदा साईं कैसे हो त वालेकुम अस्सलाम भाउ मुंहिंजा मां बिल्कुलु ठीक ठाक आहियां। अदा जन खे शो पसंदि अचे पियो ऐं चवनि था त हीउ शो नाइस आहे महिरबानी ऐं अदा जन दुआ बि कनि पिया ऐं चवनि था मैडम सुमेरा कब आएगी त अदा मुंहिंजा साईं बिल्कुलु मैडम अची वेंदी कंहिं पंहिंजी ज़ाती मसरूफ़ियात सबबि फिल वक़्तु असांजे जी एफ एम नेटवर्क खां डिस्कनेक्ट लॻी पई आहे ऐं जीअं हुनजी मसरूफ़ियात ख़तमु थी वेंदियूं त वरी हू असांजे सथ में शामिल थी वेंदी। हुन जे लाइ कुझु इंतज़ारु अञा कयो आहे ऐं कुझु तव्हांखे अञा वधीक इंतज़ारु करणो पवंदो। महिरबानी आहे अदा अब्दुरहीम तव्हांजी ऐं कुर्ब तव्हांजा तव्हांजूं ॾिनल मोहबतूं हमेशा हमेशा जे लाइ यादि रहंदियूं ऐं असां सां गॾु आहे नड़चो खां आसिफ पमर बशीर पमर ऐं चवनि था अदा अस्सलाम वालेकुम कहिड़ा हाल आहिनि भाउ मुंहिंजा मां बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियां तव्हां जूं दुआऊं मूंसां गॾु आहिनि ऐं अदा असां बि तव्हांजे लाइ दुआ घुरियूं। तव्हांखे स्पेशली मां पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार चवां थो मूंखे ईअं लॻी रहियो आहे त तव्हां पहिरियों दफ़ो मुंहिंजे हिन शो में शामिल थिया आहियो जंहिंजे लाइ लख कुर्ब तव्हांजा। ॻोठु मोहम्मद इब्राहिम संदीलो खां मोहम्मद हारून संदीलो पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे। अदा हारून कहिड़ा हाल नवां जा ठीकु आहियो उमेद आहे त तव्हां बिल्कुलु ठीक ठाक हूंदा। अदा जन चयो आहे रऊफ़ मक्सीअ जो असांखे सॉन्ग ॿुधायो त हाज़िर मुंहिंजा मिठा रऊफ़ मक्सीअ जो सॉन्ग अव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदासीं त मुंहिंजा साईं अहिड़े तरीक़े सां तव्हां बि असांजे शो में शामिल थी सघो था ऐं शामिल थियण जो तरीक़ेकार हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे मां ॿुधाईंदो हलां त पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो एम आर ओ लिखो स्पेस ॾियो स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ जे शहर जो नालो ऐं लिखी करे मोकिलियो असां 888

0: मेरे चवण जो खूबसूरत आवाज अवान जो सुंदर सवातू तो मुझे मिठा सही दोस्तों मैसेजेस भी गर वा भी शामिल कन्दा हलंदी पर वक्त थो है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो हलंदी ब्रेक की तरफ ब्रेक का वापस इंदी वापस अची कर बुधाईंदे अवान के पसंद की चूंड मौसीकी तवाजा मैसेज पैं प्रोग्राम की सूह बनाई
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब.
2: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक. फकीरी नी
3: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
4: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
5: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे.
6: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रोबीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार. सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो.
4: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4.
7: कारोबार की तरक्की लाए सोचे रहा आयो
8: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
7: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल.
8: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन.
7: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
7: 0331252576.
8: जी हाँ 2315525786
7: GFM रेडियो नेटवर्क
8: सिंध जो आवाज़.

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

गोट दूरो भेण का शौकत अली बेहण पानी प्रोग्राम बुधे पे नादर अली बेहण अली गुल बेहण अदा शौकत नादर अली गुल कड़ा हाल है ना ठीक है वो तबियत सही है अवजी अल्लाह से खुश रखो आपाद हो मुझे मिठा सही पे दफो मुझे शो में शामिल थे स्पेशली मुझे तरफ का फोर दफा भलीकार वेलकम खुश हो अड़े तरीके से तुम शो में शामिल थो मुझे तमाम घनी खुशी थे थी कुर्ब तवजा अली नवाज इस्लामी पानी प्रोग्राम बुधे पे चवन था शो तहजो ब्यूटिफुल है मेहरबानी मुझे मिठा खुश हो स्पेशली तक भलीकार चवान तो गोट सालिह शर खां मिठू खान शर पानी प्रोग्राम बुधे पे उनगुल शर अब्दुल इशाक अब्दुल इसाक शर चवन दादा सलाम कबूल पवन तो वालेकुम असलम भा मुझा कबूल पाया सलाम मुझे अखिन से चवन था अनवर अनवर विस्तड़ो नूर मोहम्मद सोलंगी जो आवाज मी कलाम बुधा हाजिर मुझा मिठा जरूर

रऊफ मक्सी जी खूबसूरत आवाज ही तवाजो समातू तो मुझे मिठा सही तवा भी असो में शामिल थी सको अड़े ही तरीके से जड़े तरीके से दोस्त असाजे शो में शामिल थे अदा हारून संदीले की फरमाइश से ही सॉन्ग अस प्ले किया है अदा इंजॉय कजो बुध मुझे मिठा सही फीडबैक जरूर दिजो।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
0: सुनते रहो GFM 90.4
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
4: ऐं हां गोठन शहरन ऐं परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
3: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252576
4: जी हां 2315525786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़

रहियो रवैयो आम चेहरे वारे इंसान के भी सभिनी जे दिलन में जाए ॾियारे छॾींदो आहे। खूबसूरत चेहरो इंसान जी सुठी सेहत जो बि अक्स हूंदो अथव। साफ़ सुथराई, मुतवाज़न खुराक, मुनासिब निंड ऐं खु़शगवार सोच इंसान जे चेहरे ते ताज़गी ऐं रौनक पैदा कनि था। जॾहिं हसद, कावड़, नफ़रत ऐं परेशानी चेहरे जी ख़ूबसूरती खे आहिस्ते आहिस्ते ख़तम करे छॾे थी। असल ख़ूबसूरती उहा आहे कहिड़ी असल ख़ूबसूरती उहा आहे जेका इंसान जे दिल, ज़बान ऐं अमल मां ज़ाहिर थिए। मुर्क, मोहबत, सुठो इख़लाक ऐं सचाई अहिड़ा ज़ेवर आहिनि जेकी हर चेहरे खे हसीन बणाए छॾीनि था। तंहिं करे असां खे ज़ाहिरी सूंहं सां गॾु पंहिंजे इख़लाक ऐं किरदार खे ख़ूबसूरत बनाइण जी कोशिश करणु घुर्जे। छो त हमेशा यादि रखो त ख़ूबसूरत चेहरो नज़रुनि खे त वणंदो आहे पर ख़ूबसूरत किरदार दिलनि ते राज कंदो आहे।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा के फोर स्टार जनरल जे उहदे ते तरक्की ॾेई छॾी। तरक्की बाद लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांडर मुक़रर। आमिर रज़ा खे फोर स्टार जनरल जे उहदे ते तरक्की मिलण ते वज़ीर-ए-आज़म पारां वाधायूं। नयूं ज़िमेवारियूं मिलण ते नेक ख़्वाहिशनि जो इज़हार बि कयो। अमेरिका ईरान ते हमला तेज करे छॾिया। चार शहरी शहीद। खोजस्तान एवाज बंदर अब्बास करमान ऐं कश्म ते हमला कया विया। सेनेट खां मूजिबि ईरान जे दिफ़ाई सलाहियतनि ते हमला कया विया आहिनि। ईरान जो बि अमेरिकी असासन अॾनि ते जवाबी वार। बहरीन ऐं उर्दन में अमेरिकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। पासदार इनकलाब मूजिबि हमलनि में अमेरिका जो वॾो नुक़सान थियो आहे।

अमेरिका ईरान में छिकताण बाद आलमी मंडीअ में तेल वधीक महांगो थी वियो। आलमी मीडिया मौजूब ईरान ते अमेरिकी हमलनि में तेज़ी बाद कचे तेल जी क़ीमत 100 डॉलर फी बैरल खां बि वधी वई आहे। ब्रेंट कचो तेल फी बैरल 101 डॉलर ऐं मरबान कचो तेल 107 डॉलर फी बैरल विकिरो थी रहियो आहे।

0: स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी खाते जेडीजी मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन ऑफिस में 1,92,00,000 का वधिक जी करप्शन जो इंकशाफ ऑडिटर जनरल ऑडिट रिपोर्ट कार्रवाई लाइ सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी खाते डां मोकले छड़ी ऑडिट में बिन ऑफिसरनि खे 9,19,000 रुपया एग्जेक्टिव अलाउंस 28,25,000 रुपयनि जी अलाउंस ऐं 9,33,000 रुपयनि जी पघार अलाउंस अदायगियुनि ते एतिराज़ कयो वियो। ऑफिस जी मुंतकिलीअ ते 39,98,000 बिल्डिंग जे भाड़े जी मद में 53,50,000 पेट्रोल स्टेशनरी प्रिंटिंग ऐं ट्रांसपोर्ट ख़र्चनि में माली ज़ाब्तनि जी भञकड़ी बाबति ऑडिट में निशानदेही थी। खाणोट वासी पोरेत नौजवान कंडियारो भरसां फुर मज़ामत ते कतल वारसन जो मंज़ूराबाद में इंडस हाईवे ते धरणो ट्रैफिक मुअतल वारसन जो हथियार बंधन ट्रक रोके नौजवान एजाज़ कोसो खे गोलियूं हणी कतल कयो नौजवान जा कातिल गिरफ़्तार करे इंसाफ कयो वञे। हिकु वण सिंध अमड़ जे नाओ केटीएन न्यूज़ ऐं कावश जे वण पोखण वारे सॾु खे भरपूर मोट सिंध खे मौसमियाती तब्दीलीअ जे असरनि खां बचाइण लाइ वण लॻाइण वारे सॾु ते सिंध वासियुनि ऐलानियल तारीख़ खां अॻु वण लॻाइण शुरू करे छॾिया। केटीएन न्यूज़ ऐं कावश पारां 24 खां 31 जुलाई 2026 ताईं वण पोखण जो सॾु ॾिनल।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM
4: 90.4। तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हा, 2315525786।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

मुंहिंजा मिठा साईं, ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करण जे लाइ सिर्फ़ महिनत ई काफ़ी न आहे, पर सुठी सोच ऐं सुठी गुफ़्तगू बि तमामु अहम आहे। जेकॾहिं हर हाल में मुस्बत सोच रखे ऐं ॿियनि सां सुठे नमूने ॻाल्हाइजे त न रुॻो माण्हुनि जूं दिलियूं खटे सघजनि थियूं, पर पंहिंजी ज़िंदगी में बि तरक़ीअ जा नवां दर खोले सघजनि था। मुस्बत सोच इंसान खे मायूसीअ खां बचाए थी। जेकॾहिं को मसलो साम्हूं अचे तॾहिं नाउमीद थियण बदिरां उन जो हल ॻोल्हण घुर्जे। अहिड़ी सोच इंसान खे मज़बूत हौसलो ॾिए थी। साॻी तरह मिठा लफ़्ज़ ऐं सुठो इख़लाक़ इंसान जी शख़्सियत जो ज़ेवर आहिनि। हिकु सुठो जुमिलो कंहिंजे दिल खे ख़ुश करे सघे थो, जॾहिं त सख़्त लहजो दिलनि में फ़ासला पैदा करे सघे थो। उन करे हमेशा अदब एतिरा

ऐं मोहबत सां ॻाल्हाइण घुर्जे। यादि रखो, जेको माण्हू सुठो सोचे थो, सुठो ॻाल्हाए थो ऐं नेक अमल करे थो, कामयाबी उन जो मुक़दर बणजी वेंदी आहे। अचो त अॼु खां उहो अहद करियूं त हर हाल में मुस्बत सोच इख़्तियार कंदासीं, ॿिए सां सुहिणे इख़लाक सां पेश ईंदासीं, पंहिंजी ज़िंदगीअ खे बहितर बनाइण जी कोशिश जारी रखंदासीं।

0: से हिट है।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: छा तव्हां या तव्हां जा प्यारा हॾन ऐं जोड़न जी तकलीफ़ुनि में मुब्तला आहिनि? हाणे पर
3: आप सुन रहे हैं,
4: आप सुन रहे हैं
3: DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।
2: छा अवां जी स्किन डल

0: ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वञे।
2: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ जीए एफएम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफएम रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
2: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

जो सॉन्ग मां प्ले करे छो है तहां मैसेज पढ़ने का सवाई अच्छा वो तहां जो नाले अदा ठीक हुजो खुश हुजो कबूल कजो चवन था दादा मीरपुर खास में बारिश तो नहीं हुई है मगर मौसम अच्छा है त अड़ो ही सागी सूरत हाल है मोरे में मौसम सुटी है हफ्सवारी मौसम है पर बरसात ना है पई रात चंद कणियों पई हुई सिर्फ चंद कणियों ही हुई वक्त सख्त बरसात की सजी सिंध के जरूरत है तो तभी के चवंदे तव्हां वध मां वध दुआगो थियो अलाह जे दर अला ताला ख़ैर जूं बरसातूं सिंध जे मथां वसाए त जीअं सिंध में जेका पाणी जी खोट जेका फसलनि खे हिन वक़्तु तमामु घणी ज़रूरत आहे पाणीअ जी न उहा पूरी थी वञे ऐं उन खां पोइ जेके जानवर आहिनि उन्हनि जे लाइ बि पाणी जमा थी वञे जेके पखी आहिनि उहे बि बरसात जे मौसम खां पोइ पाणी पीअंदा आहिनि ऐं बरसात में इंजॉय कंदा आहिनि त सभिनी खे बराबरि जेतिरो मौक़ो मिली वञे त असां बि दुआगो आहियूं तव्हां बि दुआगो रहिजो त हिन धरतीअ जे मथां अलाह ताला पंहिंजे रहमत जा ककर ज़रूरु वसाए त महिरबानी अदा किश्वर तव्हांजी तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो अदा अब्दुल रहीम जो मैसेज अची चुको आहे चवे थो मास्टर मंज़ूर जे कलाम असांखे ॿुधायो त पहिरां मास्टर मंज़ूर ऑलरेडी मां प्ले करे चुको आहियां ऐं उमेदु आहे त तव्हां उहो ॿुधो बि हूंदो ऐं सॉन्ग तव्हांखे पसंदि बि आयो हूंदो हिन वक़्तु बशीर जतोई जे आवाज़ में हिकिड़ो सॉन्ग आहे मुंहिंजे प्ले लिस्ट में अचो तव्हांखे उहो थो ॿुधायां

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने
2: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
3: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252576
3: जी हा 2315525786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

हिन क़िस्म जो हब्स ऐं हिन क़िस्म जी मौसमी तब्दीलियुनि खां जेको सॼी दुनिया हिन वक़्तु परेशान आहे त उहे उन परेशानी खां बची पवंदा। मतिलब चवण जो त वण तव्हांखे ज़रूर काइणा आहिनि। उन खां पोइ पंहिंजी नियाणियुनि खे ऐं पंहिंजे पुटनि खे दीनी व दुनियावी तालीम ज़रूर ॾींदा कयो। जुमे जो भलारो ॾींहुं आहे, हुन में दुरुद पाक कसरत सां पढ़जो, निमाज़ ते वञिजो ऐं असांखे पंहिंजे दुआउनि में ज़रूर यादि कजो। त ॿिए प्रोग्राम ते पंहिंजे मेज़बान गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह वाही अलहन कहबा।

0: ट्रीटमेंट,
1: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अब आप सुनेंगे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा के फोर स्टार जनरल के अहदे ते तरक्की डेई छॾी। तरक्की बाद लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा कमांडर नेशनल स्ट्रेट जे कमांडर मुकरर आमिर रज़ा के फोर स्टार जनरल के अहदे ते तरक्की मिलण ते वज़ीर-ए-आज़म पारां वाधायूं नयूं ज़िमेवारियूं मिलण ते नए ख़्वाहिशनि जो इज़हार बि कयो। ईरान इराक ज़रिए अमेरिका जी जंग बदीअ वारी आछ रद्द करे छॾी। अमेरिकी अख़बार न्यूयॉर्क टाइम्स जी दावा। अमेरिकी अख़बार मूजिब इराकी वज़ीर आज़म अमेरिकी दौरे तां वापसीअ बाद ईरान जो दौरो करे ईरानी क़यादत खे अमेरिका जी जंग बदी वारी आछ बाबति आगाह कयो। ईरानी इख़्तियारनि जवाब ॾींदे चयो त आर्ज़ी जंग बंदी क़बूल न हूंदी। अमेरिका सां ॻाल्हियुनि लाइ पहिरियां ई साल्स मौजूद आहिनि। आर्ज़ी जंग बंदीअ सां अपना हर्मुज़ जो मसलो हल न थींदो। अमेरिका ईरान ते हमला कश्मीर ते हमला कया विया। सेनेट खां मौजूद ईरान जो ब्याम के असासन ऐं अॾनि ते जवाबी वार। बहरीन ऐं उर्दन में अमेरिकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। पासदार इनकलाब मौजूद हमलनि में अमेरिका जो वॾो नुक़सान थियो आहे।

अमेरिका ईरान में छिकताण बाद आलमी मंडी में तेल वधिक आलमी विड़िया मौजूद ईरान ते अमेरिकी हमलन में तेजी बाद कच्चे तेल की कीमत $100 फी बैरल का भी वधिक वही थी वही है। बैरल कच्चो तेल फी बैरल $101 है। मरमान कच्चो तेल $107 फी बैरल विक्रो थी रो है।

कंहिं मुल्क जा असासा मंद करे डंड तौर इस्तेमाल करण जा नतीजा खतरनाक थी सघनि था। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास इराक़ी चयो आहे त ट्रंप जे बयान ते ख़ुश थींदड़ सम्झी वठनि त हुकूमतनि ॿियनि मुल्कनि जा असासा मंद करण शुरू कया त सभिनी जो नुक़सान थींदो। सदा

बबर लोहे में मासूम बारन जे अगवा खिलाफ एहतजाज करण तां गिरफ्तार थियल सोनी पारस लियाकत जलवाणी ऐं बेन खे पुलिस अदालत में पेश न कयो। अदालत पारां पुलिस ते सख्त कावड़ जो इज़हार ॿुधणी सुभाणे ताईं मुर्तवी। अदालत चयो त गिरफ़्तार कयलनि खे सुभाणे अदालत में पेश न कयो वियो त डीआईजी खे ज़ाती हैसियत में तलब कयो वेंदो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
0: सिंध की आवाज।
2: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: त पोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एड़ो एफएम रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
4: आई। हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलाण लाए
4: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
3: 0331252576।
4: जी हाँ बुड़ी 231 525 786।
3: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद से, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
3: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत डी जी खुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।
4: شان رسالت مولا جانے بیکے طاقت نہ گئے شان رسالت مولا جانے بیکے طاقت نہ گئے مالک جو محبوب محمد کو نے کے

पता चल जाए, उनको भी पता चल जाए इस पिंडाल में मौला अली के आशिक बैठे हैं। बावाज़े बुलंद, मैंने वापस सिंध जाना है, आपकी आवाज सिंध तक मेरे कानों में गूंजती रहे। बावाज़े बुलंद है।

अभी उतनी आवाज नहीं आई। महफिल वाला पता नहीं कहाँ बैठा है, मैं तो जानता हूँ किधर है, सारे ही महफिल वाले। हाँ, ये जितने स्टेज पे बैठे हैं इनको इतनी आवाज सुनाएं, इतनी आवाज आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी जितनी ये आशिक अब निकालेंगे। समा फरमाएं बावादे बुलंद, जितनी अल्लाह ने जान में ताकत दी है उतनी जान के साथ मौलाली के नारे का जवाब देना है। बावादे बुलंद, हैदर वर का सकीन कोई देखी आए जग सारा, सफर दबेड़ा पार।

0: बस खत्म। जो बाहर खड़े हैं वो भी बोल दे
1: हो नारे हैदरी।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

ईरान इराक ज़रिए अमेरिका जी जंग बदी वारी आछ रद्द करे छी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स जी दावा, अमेरिकी अखबार मूजिब इराकी वज़ीर आज़म अमेरिकी दौरे तां वापसी बाद ईरान जो दौरो करे ईरानी क़यादत खे अमेरिका जी जंग बंदी वारी आछ बाबति आगाह कयो। ईरानी इख़्तियारनि मूजिब जवाब ॾींदे चयो त आर्ज़ी जंग बंदी क़बूल न हूंदी। अमेरिका सां ॻाल्हियुनि लाइ पहिरियां ई सार्स मौजूदु आहे। आर्ज़ी जंग बंदीअ सां आबनार्म जो मसलो हल न थींदो। अमेरिका ईरान ते हमला तेज करे छॾिया। चार शहरी शहीद खोजस्तान नवाज बंदर अब्बास करमान कस्म ते हमला कया विया। सेनेट काम मूजिबि ईरान जी दिफ़ाई सलाहियतनि ते हमला कया विया आहिनि। ईरान जो बि अमेरिकी असासन ऐं अॾनि ते जवाबी वार। बहरीन ऐं उर्दन में अमेरिकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। पासदार इनकलाब मूजिबि हमलनि में अमेरिका जो वॾो नुक़सान थियो आहे। मुल्क जा असासा मंझ मंद करे डंड तौर इस्तेमाल करण जा नतीजा खतरनाक थी सघनि था। ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास इराक़ी चयो आहे त ट्रंप जे बयान ते ख़ुश थींदड़ समझी वठनि त हुकूमती ॿियनि मुल्कनि जा असासा मंझ मंद करण शुरू कया त सभिनी जो नुक़सान थींदो। सदर ट्रंप ईरानी असासा नुक़सान लाइ इस्तेमाल करण जी धमकी ॾिनी आहे। अमेरिका ऐं ईरान में छकताण बाद आलमी मंडीअ में तेल वधीक महांगो थी वियो। आलमी मीडिया मूजिबि ईरान ते अमेरिकी हमलनि में तेज़ी बाद कचे तेल जी क़ीमत 100 डॉलर फी बैरल खां बि वधी वई आहे। ब्रेंट कचो तेल फी बैरल 101 डॉलर ऐं मरबान कचो तेल 107 डॉलर फी बैरल विकिरो थी रहियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा खे 4-स्टार जनरल जे उहिदे ते तरक़ी ॾेई छॾी। तरक़ी बाद लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा कमांडर नेशनल स्टेट जग कमांडर मुक़ररु। आमिर रज़ा खे 4-स्टार जनरल जे उहिदे ते तरक़ी मिलण ते वज़ीर आज़म पारां वाधायूं। नयूं ज़िमेवारियूं मिलण ते नेक ख़्वाहिशनि जो इज़हार बि कयो। सदर आसिफ ज़रदारीअ सां बलूचिस्तान जे सूबाई वज़ीरनि जी बिलावल हाउस में मुलाक़ात। बलूचिस्तान में अमुन अमान जी सूरतहाल ऐं तरक़ियाती कमनि जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल। सदर आसिफ ज़रदारी पारां बलूचिस्तान में तरक़ी जो अमल तेज़ करण ते ज़ोर भरियो। सूबाई वज़ीरनि खे अवाम सां राब्तनि में रहण जी हिदायत।

कानून टोड़ींदड़ ऐं लोह कंदड़ खे कानून जे कटहरे में पेश करण पुलिस जी ज़िमेवारी आहे। सिंध पुलिस जा जवान ऐं आफिसर बहादुरीअ सां दहशतगर्दीअ जो मुक़ाबलो करे रहिया आहिनि। कराची में सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पुलिस जी तरबियत मुकमिल कंदड़ जवाननि खे ख़िताब कंदे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो त सूबे में अमुन जी ज़िमेवारी पुलिस जी आहे। दहशतगर्दी ख़िलाफ़ बि पुलिस जो किरदार साराह जोॻो आहे। पुलिस तरबियत खे बहितर करण सां गॾु जदीद हथियार ऐं टेक्नोलॉजी जी बि ॼाण ॾिनी वेंदी।

मरसूं मरसूं सिंध न ॾेसूं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी हिदायत ते सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में पीपल्स पार्टीअ जूं रैलियूं लाड़काणो, कंबर, कंदकोट, कश्मोर, खैरपुर, शादात कोट, मिठी कोट, गुलाम मोहम्मद, उबावड़ो, तंगवाणी, नवदेरो, डोकरी ऐं ॿियनि शहरनि में रैलियूं कढियूं वयूं। अॻवाननि चयो त भारत पाकिस्तान जो पाणी रोके रहियो आहे, सिंधू दरिया खे रोकण जी कंहिंखे बि इजाज़त न ॾिनी वेंदी। मोदी ॿुधी छॾे त सिंधू दरिया ते पाकिस्तान जो हक़ आहे, पाणीअ ते धाड़ो क़बूल नाहे। बबरलोए में मासूम ॿारनि जे अॻवा ख़िलाफ़ एहतजाज करण तां गिरफ़्तार थियल सोणी पारस लियाकत जलमाणी ऐं ॿियनि खे पुलिस अदालत में पेश न कयो। अदालत पारां पुलिस ते सख़्त कावड़ जो इज़हार, गिरफ़्तार कयलनि खे सुभाणे पेश करण जो हुकुम। अदालत चयो त पुरअमन एहतजाज ते तशद्दुद इंसानी हक़नि जे ख़िलाफ़ वर्ज़ी आहे, ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। गिरफ़्तार कयलनि खे सुभाणे अदालत में पेश न कयो वियो त DIG खे ज़ाती हैसियत में तलब कयो वेंदो। बबरलोए धरणे ते पुलिस तशद्दुद, गिरफ़्तारी ऐं अॻवा थियल ॿारनि जी बाज़ियाबी लाइ सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाज।

भी पारा एहतजाज कयो वियो। कंबर में भी सियासी समाजी धुरन जो मुज़ाहिरो। काजी अहमद में भी समाजी तंजीम पारा रैली कढ़ी वही एहतजाज कयो वियो। ठुल गंबट ए डोकरी में भी बबर लोई धरणे में शरीक मानुन ते तशद्दुद खिलाफ एहतजाज कयो वियो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिन जी खुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: Har din har pehar zindagi ki lehar. GFM 88 Network. Sindh ki awaaz.
4: जुमत उल मुबारक जे बाबरकत दिएं जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत डी जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

पाकिस्तान में एक मंसूबे तहत दहशतगर्दी थी रही आहे। पाकिस्तान में थींदड़ दहशतगर्दीअ में भारत मुलविस आहे। पाड़ेसरी मुल्क खे बि समझाइण जी कोशिश करे रहिया आहियूं। बलूचिस्तान बाबति वर्कशॉप खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त अफ़गान रजीम दहशतगर्दनि खे रोकण में नाकाम वयूं आहिनि। सभिनी खे गॾिजी दहशतगर्दीअ जो मुक़ाबलो करणो पवंदो। बलूचिस्तान जे हुकूमत सदाई वफ़ाक़ जी मज़बूतीअ लाइ कम कयो आहे। बलूचिस्तान जी तरक़ी मुल्की तरक़ीअ सां ॻंढियल आहे। ख़िते में अमुन जे क़याम लाइ पाकिस्तान जो किरदार दुनिया जे साम्हूं आहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऐं इसहाक़ डार जूं कोशिशूं साराह जोगियूं आहिनि।

इराक ज़रिए अमेरिका जी जंग बंदी वारी आछ रद्द करे छी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स जी दावा, अमेरिकी अखबार मूजिब इराकी वजीर आजम अमेरिकी दौरे तां वापसी बाद ईरान जो दौरो करे ईरानी क़यादत के अमेरिका जी जंग बंदी वारी आच बाबत आगाह कयो। ईरानी इख्तियार जवाब डींदे चयो त आरज़ी जंग बंदी कबूल न हूंदी, अमेरिका सां ॻाल्हियुनि लाइ पहिरियां ई साल्स मौजूद आहिनि, आरज़ी जंग बंदीअ सां अबनार्म्स जो मसलो हल न थींदो।

अमेरिका ईरान ते हमला तेज करे छड़िया चार शहरी शहीद खोस्तान एवाज बंदर अब्बास करमान ए कश्मीर ते हमला कया वया सेनेट का मौजूद ईरान के दिफाई सलाहतन ते हमला कया वया हैं ईरान जो भी अमेरिकी असासन अडन ते भी जवाबी वार बहरीन ए उर्दन में अमेरिकी अडन के निशानों बनाया वो पासदार इनकलाब मौजूद हमलन में अमेरिका जो वो नुकसान थो है। कें मुल्क जा सासा मंझ बंद करे डंड तौर इस्तेमाल करण जा नतीजा खतरनाक थी सगन था। ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकची चयो है ट्रंप जे बयान ते खुश थींदड़ समझी वठन त हुकूमतन बेन मुल्कन जा असासा मंझ बंद करण शुरू कया त सबनी जो नुकसान थींदो। सदर ट्रंप ईरानी असासा नुकसान ला इस्तेमाल करण जी धमकी डिनी आहे। अमेरिका ईरान में छिकताण बाद आलमी मंडी में तेल वधीक महंगो थी वयो। आलमी मीडिया मौजूब ईरान ते अमेरिकी हमलन में तेजी बाद कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर फी बैरल का भी वधी वई आहे। बैरल कच्चो तेल फी बैरल 100 डॉलर एक मरबान कच्चो तेल 107 डॉलर फी बैरल वेप्रो थी रहो आहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा के फोर स्टार जनरल के अहदे ते तरक्की बाद लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा कमांडर नेशनल स्टेट जग कमांडर मुकर्रर आमिर रजा के फोर स्टार जनरल के अहदे ते तरक्की मिलण ते वजीर आजम पारा वाधायूं नयूं जिम्मेवारियूं मिलण ते नेक ख्वाहिशन जो इज़हार बि कयो वियो। सदर आसिफ ज़रदारी सां बलोचिस्तान जे सूबाई वज़ीरनि जी बिलावल हाउस में मुलाकात। बलोचिस्तान जी सूरतहाल ऐं तरक़ियाती सां ॻाल्हि ॿोल सदर आसिफ ज़रदारी पारां बलोचिस्तान में तरक़ी जो अमल तेज़ करण ते ज़ोर भरियो। सूबाई वज़ीरनि खे अवाम सां राब्तनि में बि रहण जी हिदायत।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन White Age Beauty Cream।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
2: हाय हाय हाय।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंपली है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पाकिस्तान में एक मनसूबे तहत दहशतगर्दी थी रही है। पाकिस्तान में थींदड़ दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। पाड़ेसरी मुल्क के भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बलूचिस्तान बाबत वर्कशॉप के खिताब कंदे वजीर आजम शहबाज शरीफ चवाए त अफगान रजीम दहशतगर्दन के रोकण में नाकाम वन। सभी के गजी दहशतगर्दी जो मुकाबलो करण पवन। बलूचिस्तान की हुकूमत सदाई वफाक की मजबूती लाय कम किया है। बलूचिस्तान की तरक्की मुल्की तरक्की से गंढियल है। खिते में अमन के क्याम लाय पाकिस्तान जो किरदार दुनिया के सामू है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ए सागदार जो कोशिशों सारा जोगियों आहिन। ईरान इराक जरिए अमेरिका की जंग बंदी वाली आच रद्द करे छी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के दावा। अमेरिकी अखबार मूजिब इराकी वजीर आजम अमेरिकी दौरे त वापसी बाद ईरान जो दौरो करे ईरानी क्यादत के अमेरिका की जंग बंदी वाली आच बाबत आगाह कयो। ईरानी इख्तियार जवाब डींदे आरजी जंग बंदी कबूल न हूंदी। अमेरिका से गाल पैर ही साल्स मौजूद आन। आरजी जंग बंदी से आबनारमस जो मसलो हल न। अमेरिका ईरान ते हमला तेज करे छड़िया। चार शहरी शहीद खुजस्तान एवाज बंदर अब्बास करमान कश्म ते हमला कया वया। सेनेट का मूजिब ईरान की दिफाई सलाहतन ते हमला कया वया। ईरान जो भी अमेरिकी असासन ए अडन ते जवाबी वार बहरीन ए उर्दन में अमेरिकी अडन के निशानो बनाया वयो। पाजार इनकलाब मूजिब हमलन में अमेरिका जो वडो नुकसान थियो आहे। कें मुल्क जसासा मंजमंद कर डन तौर इस्तेमाल करण जा नतीजा खतरनाक थी सगन था। ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकसी है त ट्रंप के बयान से खुश थन्दड़ समझी वठन त हुकूमत बेन मुल्क जसासा मंजमंद कर शुरू कया त सभी जो नुकसान थन्द। सदर ट्रंप ईरानी असासा नुकसान ला इस्तेमाल करण की धमकी डनी है। अमेरिका ईरान में छिकताण बाद आलमी मंडी में तेल वधीक महंगो थी वयो। आलमी मीडिया मूजिब ईरान ते अमेरिकी हमलन में तेजी बाद कच्चे तेल की कीमत $100 फी बैरल का भी वधीक थी वई आहे। ब्रेंट कच्चो तेल फी बैरल $101 ए मुरबान कच्चो तेल $107 फी बैरल विक्रो थी रहो आहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा के फोर स्टार जनरल के अहदे से तरक्की दई छी। तरक्की बाद लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांडर मुकरर। आमिर रजा के फोर स्टार जनरल के अहदे से तरक्की मिलने से वजीर आजम पारा वाधायूं नयू जिम्मेवार मिलने से नए ख्वाहिशन जो इजहार भी कयो। सिक्योरिटी फोर्सेज जो बलूचिस्तान में ऑपरेशन अलज़म जारी। हिंदुस्तानी फितने जा चार दहशतगर्द मारजी वया। सिक्योरिटी जरियन मौजूद मस्तोंग के इलाके करकोचा में ऑपरेशन दौरान चार दहशतगर्दन के जहनम भेड़ो कयो वयो। ऑपरेशन दौरान दहशतगर्दन वटां वडी मिकदार में हथियार भी हथ कया आहिन। तेल ए गैस पैदा कंदड़ सूबन के आइनी हक न डेण आइन की संगीन भंजकड़ी है। सिंध में रोजानी 3.70 अरब रुपये जो तेल निकरे तो पर सिंध के कुछ भी नो डो वे। कंपनियों ए कारपोरेशन्स मुनाफो कमाए रही है। आवाम भुख मरी रो है। सेनेट कमेटी के चेयरमैन जमीर घुमरो है त वफाकी हुकूमत सूबन के तेल ए गैस जहा पैसा छो न डेई रही है। अरणी आइनी तरमीम ते भी अमल न थी रो है। सेनेट कमेटी चयो त गैर जरूरी वजारतू खत्म करे सालियानो 5,000 अरब बचाए सकजन था। सेनेटर जान मोहम्मद बुलेदी चयो त मुल्क के माली बोहरान मां कढ़ण लाइ हुकूमती खर्चन में वाज़े घटताई जरूरी है। नेप केस बुधण जो इख्तियार असांजो नाहे। नेप केसनि में ज़मानत वारनि दरख़्वास्तनि अपीलनि ते ॿुधणी वफ़ाक़ी आईनी अदालत कंदी। सुप्रीम कोर्ट फ़ैसिलो जारी करे छॾियो। सुप्रीम कोर्ट जे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जी सरबराई में टे रुकनी बेंच फ़ैसिलो जारी कयो। फ़ैसिले मूजिब नेप केसनि में ज़मानत बाबति हाईकोर्ट जे फ़ैसिलो ख़िलाफ़ अपीलूं ॿुधण जो इख़्तियार सुप्रीम कोर्ट जो न पर वफ़ाक़ी आईनी अदालत जो आहे। नेप केसनि जूं समूरियूं अपीलूं वफ़ाक़ी आईनी अदालत ॾांहुं मुंतक़िल कयूं वञनि। कानून टोड़ींदड़ ऐं ॾोह कंदड़ खे कानून जे कटेड़े में पेश करणु पुलिस जी ज़िमेवारी आहे। सिंध पुलिस जा जवान ऐं आफ़िसर बहादुरीअ सां दहशतगर्दीअ जो मुक़ाबिलो करे रहिया आहिनि। कराची में सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पुलिस जी तरबियत मुकमिल कंदड़ जवाननि खे ख़िताब कंदे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो त सूबे में अमुन जी ज़िमेवारी पुलिस जी आहे। दहशतगर्दी ख़िलाफ़ बि पुलिस जो किरदार साराह जोॻो आहे। पुलिस तरबियत खे बहितर करण सां गॾु जदीद हथियार ऐं टेक्नोलॉजी बि ॾिनी वेंदी। मरसू सिंध न ॾेसू। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी हिदायत ते सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में पीपल्स पार्टी जूं रैलियूं लाड़काणो, कंबर, कंदकोट, कश्मोर, खैरपुर, शादात कोट, मिठी कोट, गुलाम मोहम्मद, बावड़ो, तंगवाणी, नवदेरो, डोकरी, डिगड़ी, गली लखी, गुलाम शाह, ठुल, रतोदेरो, कंबर, सिंधड़ी, वारे में बि पीपी पारां रैलियूं कढियूं वयूं। गढ़ी यासीन, नसीराबाद, फकीराबाद, कुबो सईद खान में बि रैलियूं कढियूं वयूं। रैलियुनि में भारत ऐं मोदी ख़िलाफ़ नारेबाज़ी कई वई। अॻवाणनि चयो त मोदी ॿुधी छॾे, सिंधु दरिया ते पाकिस्तान जो हक़ आहे, पाणीअ ते क़बूल न। बबर लोए में मासूम ॿारनि जे अॻवा
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आप सुन रहे हैं GAFM ETH नेटवर्क, सिंध की आवाज, सिंध की आवाज।
3: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।
5: ओ सदका।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पाकिस्तान में एक मनसूबे तहत दहशतगर्दी थी रही है। पाकिस्तान में थींदड़ दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। पाड़ेसरी मुल्क के पिसम जाण की कोशिश कर रहा हूं। बलोचिस्तान बाबत वर्कशॉप के खिताब कदे वजी अजम शहबाज शरीफ है तो अफगान रिजीम दहशतगर्दन के रोकण में नाकाम व्यून सभी के गडजी दहशतगर्दी जो मुकाबलो करो पवो। बलोचिस्तान की हुकूमत सदाई वफाक की मजबूती लाय कम है। बलोचिस्तान की तरक्की मुल्की तरक्की से गंढियल है। खिते में अमन के क्याम लाय पाकिस्तान जो किरदार दुनिया के सामू है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इसाक डार जो कोशिशों सारा जोग्य। ईरान इराक जरिए अमरीका की जंगबंदी वाली आर्च रद्द कर छी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की दावा। अमरीकी अखबार मूजिब इराकी वजीर आजम अमरीकी दौरे

वापसी बाद ईरान जो दौरो करे। ईरानी क्यादत के अमरीका की जंग बंदी वाली आज बाबत आगाह किया। ईरानी अख्तियारियन जवाब दींदे आरसी जंग बंदी कबूल न हूंदी। अमरीका से गालियन लाए पेरिया ही सालिस मौजूद आरसी जंग बंदी से अपना हर मुझो मसलो हल न थींदो।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज, GFM 90.4।
2: आओ सब्जी वालो, ताजी सब्जी खाओ, अदा गोश्त महंगो, मुर्गी महंगी, मच्छी महंगी, ताजू सब्जी खाओ, सेहत बढ़ाओ। आओ

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: वज़ीर आज़म पाकिस्तान जे सभ खां वॾी डेटा सेंटर स्काई 47 कराकरम हाई वन जो इफ़्तिताह करे छॾियो। सेंटर क्लाउड कम्यूटिंग, डेटा होस्टिंग ऐं डिजिटल ख़िदमतुनि लाइ मज़बूत बुनियाद फराहम कंदो। सेंटर हथरादू ज़हानत, मशीन लर्निंग ऐं हाई परफॉर्मेंस कम्प्यूटिंग जूं घुर्जूं पूरियूं करण जी सलाहियत रखे थो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त हक़ जी जंग में कामयाबी मुल्की तारीख़ जो अज़ीम तरीन लम्हो हो। ॾुखियाइनि ऐं चैलेंजेस जो हौसले सां मुक़ाबलो कयूं त हक़ जी जंग जहिड़ा तारीख़ी कारनामा जनम वठंदा आहिनि। लाॻीतो महिनत अहिड़नि अज़ीम मनसूबनि खे हक़ीक़त जो रूप ॾींदी आहे। स्काई 47 जहिड़ा मनसूबा पाकिस्तान जे मुस्तक़बिल जी ज़मानत आहिनि। ईरान इराक ज़रिए अमरीका जी जंग बंदीअ वारी आछ रद्द करे छॾी। अमरीकी अख़बार न्यूयॉर्क टाइम्स जी दावा। अमरीकी अख़बार मूजिबि इराकी वज़ीर

आज़म अमरीकी दौरे तां वापसी बाद ईरान जो दौरो करे ईरानी क़यादत खे अमरीका जी जंग बंदीअ वरी आछ बाबति आगाह कयो। ईरानी अख़्तियारनि जवाब ॾींदे चयो त आरज़ी जंग बंदी क़बूल न हूंदी। अमरीका सां ॻाल्हियुनि लाइ पहिरियां ई ट्रैकड़ कंदड़ मुल्क मौजूद आहिनि। आरज़ी जंग बंदीअ सां आबनाह हुर्मज़ जो मसलो हल न थींदो। अमरीका ईरान ते हमला तेज करे छॾिया। वधीक चार शहरी शहीद खुज़स्तान, अहवाज़, बंदर अब्बास, करमान ऐं कशम ते हमला कया विया। सेंटकॉम मूजिबि ईरान जे दिफ़ाई सलाहियतुनि ते बि हमला कया विया आहिनि। ईरान जो बि अमरीकी अॾनि ते जवाबी वार। बहरीन ऐं उर्दन में अमरीकी अॾनि ते हमला। पासदारान इनकलाब मूजिबि बहरीन में एमेज़ॉन जो डेटा सेंटर तबाह कयो वियो आहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जी किर्गिस्तान में ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराकचीअ सां अहम मुलाक़ात। बितरफ़न लाॻापन समेत खिते जी मौजूदा सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठ। इसहाक डार पारां खिते जी ताज़ी सूरतहाल ते गणती ज़ाहिर। इस्लामाबाद मुआहिदे ते अमल लाइ ज़ोर। ईरानी पर अब्बास इराकचीअ पारां खिते में अमुन जे क़याम लाइ पाकिस्तान जी सफारती कोशिशुनि जी वाखाण। ॿिन्ही अॻवाननि जो मौजूदा सूरतहाल ते राब्तनि में रहण ते बेतफ़ाक़। अब्बास इराकची जो चवण हो त अमरीका जी सिधी रीत मदाखलत आबनाह हुर्मज़ जी सलामती खे खतरे में विझी छॾियो आहे। इस्लामाबाद मुआहिदे बाद अमरीकी हमलनि साबित कयो त वाशिंगटन मुआहिदा टोड़ींदड़ आहे।

वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा के फोर स्टार जनरल जी उहदे ते तरक्की ॾेई छॾी। तरक्की बाद लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड मुक़रर। आमिर रज़ा के फोर स्टार जनरल जी उहदे ते तरक्की मिलण ते वज़ीर आज़म पारां वाधायूं। नयूं ज़िमेवारियूं मिलण ते नेक ख़्वाहिशनि जो इज़हार। सिक्योरिटी फोर्सिस जो बलोचिस्तान में ऑपरेशन अलअज़म जारी। हिंदुस्तानी फितने जा चार दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियन मूजिब मस्तोंग जे इलाइक़े खड कोचा में ऑपरेशन दौरान चार दहशतगर्दनि खे जहनम भेड़ो कयो वियो। ऑपरेशन दौरान दहशतगर्दनि वटां वॾे मक़दार में हथियार बैत कया विया आहिनि। तेल ऐं गैस पैदा कंदड़ सूबनि खे आइनी हक़ न ॾियण आइन जी संगीन भञकड़ी आहे। सिंध मां रोज़ानी 3.70 अरब रुपियनि जो तेल निकिरे थो, पर सिंध खे कुझु नथो ॾिनो वञे। कंपनीज़ ऐं कारपोरेशन्स मुनाफ़ो कमाए रहियूं आहिनि, अवाम बुख मरे रहियो आहे। सेनेट कमेटी जे चेयरमैन ज़मीर घुमरो चयो आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत सूबनि खे तेल ऐं गैस जा पैसा छो न पई ॾिए। अणही आइनी तरमीम ते बि अमल न थी रहियो आहे। सेनेट कमेटी चयो त गैर ज़रूरी वज़ारतूं ख़तम करे सालियानो 5,000 अरब बचाए सघजनि था। सेनेटर जान मोहम्मद बोलेदी चयो त मुल्क खे माली बोहरान मां कढण लाइ हुकूमती ख़र्चनि में वाज़े घटताई ज़रूरी आहे। नेब केस ॿुधण जो अख़्तियार असांजो नाहे। नेब केसनि में ज़मानत वारनि दरख़्वास्तनि वफ़ाक़ी कंदी, सुप्रीम कोर्ट फैसलो जारी करे छॾियो। सुप्रीम कोर्ट जे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जी सरबराही में 2 रुकनी बेंच फैसलो जारी कयो। फैसले मूजिब फैसलनि ख़िलाफ़ अपीलूं ॿुधण जो अख़्तियार सुप्रीम कोर्ट जो न पर वफ़ाक़ी आइनी अदालत जो आहे। नेब केसनि जूं समूरियूं अपीलूं वफ़ाक़ी आइनी अदालत ॾांहुं मुंतक़िल कयूं वञनि।

कानून टोड़ींदड़ ऐं ॾोह कंदड़ खे कानून जे कटहरे में पेश करणु पुलिस जी ज़िमेवारी सां दहशतगर्दीअ जो मुक़ाबलो करे रहिया आहिनि। कराची में सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पुलिस जी तरबियत मुकमल कंदड़ जवाननि खे ख़िताब कंदे सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त सूबे में अमून अमान जी ज़िमेवारी पुलिस जी आहे। दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ बि पुलिस जो किरदारु साराह जोॻो आहे। पुलिस तरबियत खे बहितर करण सां गॾु जदीद हथियार ऐं टेक्नोलॉजी बि ॾिनी वेंदी।

0: बबलो में मासूम बालनि जी अगवा खिलाफ़ एहतजाज करण तां गिरफ़्तार थियल सोनी पारस लियाकत जलबाणी ऐं ॿियनि खे पुलिस अदालत में पेश न कयो। अदालत पारां पुलिस ते सख़्त कावड़ जो इज़हार। गिरफ़्तार कयलनि खे सुभाणे ताईं पेश करण जो हुकुम। अदालत चयो त पुरअमुन एहतजाज ते तशद्दुद इंसानी हक़नि जी ख़िलाफ़ आहे, ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। गिरफ़्तार कयलनि खे सुभाणे अदालत में पेश न कयो वियो त DIG खे ज़ाती हैसियत में तलब कयो वेंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: ताडो सुठो
2: GAFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।

0: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
0: बसि पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 0331252576।
1: जी हा, 2315525786।
0: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: ठीक है।
1: It's 6:15 PM.
2: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: सिंध के माथे का झूमर
4: GFM 88 नेटवर्क
5: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

मलीर 15 में रेंजर्स ए एसआईयू पुलिस की गडियल कार्रवाई। टे भत्तेखोर मारजी विया, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। रेंजर्स तर्जमान चवण है भत्तेखोर की मौजूदगी के इतला से कार्रवाई दौरान डोहारन से मुकाबलो थी पियो। फायरिंग की डेवट दौरान टे भत्तेखोर मारजी विया, एक के जख्मी हालत में गिरफ्तार कर वरतो है। डोहारन के क्रिमिनल रिकॉर्ड के हवाले से अधिक जांच जारी है। बलोचिस्तान में गैर मुल्की सरपरस्ती में थींदड़ दहशतगर्दी के पूरी ताकत से चिथे छींदी। प्राक्सी अंसर बलोचिस्तान में तशद्दुद के हथी डण इस्तेहकाम के कमजोर करण अमन के टोड़ की कोशिश कर रहा है। हथियारबंद फौज के फैसलाती जवाब में आवाम के इतिहाद जरिए दुश्मन के नापाक इरादन के नाकाम बणायो वेंदो। बलोचिस्तान जा मोबे वतन हिम्मत वारा माण्हू सूबे के सब का वडी ताकत आन। फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर जीएचक्यू में वी नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के खिताब कंदे दहशतगर्दी के खात्मे तई फितनतुल ख्वारिज फितनतुल हिंदुस्तान खिलाफ कार्रवाई जारी रहंदियूं। दहशतगर्दन जो ढांचो जिते भी हों तबाह कयो वेंदो। लागीतो कोशन ऐं अवाम जी हिमायत सां बलोचिस्तान में जटादार अमुन कायम कयो वेंदो। वजीर आजम शहबाज शरीफ पयो सऊदी वली अहद बिन सलमान से फोन ते राबतो। सऊदी अरब के बहरी जहाजन ते हुसैन के हमले की सख्त लफ्जन मज़ामत। सऊदी अरब से मुकमल एके जो इजहार। शहबाज शरीफ चयो मां फील्ड मार्शल ए कौम सऊदी क्यादत अवाम से गड बीठल है। सऊदी बहरी टैंकर्स ते हमला कें भी सूरत में कबूल जोगा ना। हमले आलमी कानून की सीधी भंकड़ी है। अड़न कदम से इलाके की सलामती ए अमन के नुकसान थी सके तो। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती खुद मुख्तियारी ए खुशहाली की हिमायत जारी रखो। सऊदी वली अहद पारा पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत ए वेझन लागापन की साराह कई।

0: सितंबर 2018 जे भेट में 47 वोटन सा नाकाम ईरान खिलाफ फौजी कार्रवाई कांग्रेस जी मंजूरी सा मशरूत न थी सकी। अमरीकी मीडिया मुजब सेनेट सदर ट्रंप के ईरान खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का रोके छो। चार रिपब्लिक सेंटर पिण डेमोक्रेट के ठहराव की हिमायत में वोट डना। अमरीकी कांग्रेस अज ईरान खिलाफ जंग रोकने का ठहराव मंजूर कर। अमरीकी सदर ईरान में एक भेरो बीहर वही फौजी कार्रवाई की धमकी दे छी। ट्रंप है ईरान के अजा का घनी तकलीफ न पौती। वही फौज कार्रवाई करने गौर पे हाने ईरान से पेक फेवरी ऑपरेशन का हमला थी सकता। अमरीकी सदर पांजे बयान में चयो तो सऊदी अरब से सिविल एटमी मुआहदा मुकम्मल तौर इब्राहिमी मुआहदन में सऊदी की शमूलियत से मशरूत है। अमरीका सऊदी सिविल एटमी मुआहद रुगो गैर फौजी इस्तेमाल आया है। विच ओभर की सूरत हाल हथन में निकरी रही है। जंग हाने इतने बंद थे घुर्जे। गडियल कौमन के सेक्रेटरी जनरल एंतो गोदरेज विच ओभर की सूरत हाल से गणती जो इजहार कदे मसलन जो हल वाहिद सिर्फ सफारतकारी में ही आए। आबने अरंज में तजारती जहाजन की अचवंज बहाल थे घुर्जे। हुकूमत एक भेरो बीहर पेट्रोलियम शयन के अघन में वाध कर छी। पेट्रोल 4.40 रुपया ए डीजल 3.62 रुपया महंगो। पेट्रोल जो नव अघ 331.52 रुपया ए डीजल जो नव अघ 378.60 रुपया फी लीटर मुकरर। पेट्रोलियम डिवीजन पारा 24 जुलाई ला पेट्रोलियम शयन के नवन अघन जो नोटिफिकेशन जारी। सिंध काबीना पारा वफाक का 5 लख मैट्रिक टन कणक खरीद करण जो फैसलो। सरकारी मुलाजमन के तफरी ए सफरी अलाउंस में वाज की मंजूरी। मईशत मौसमियात मसनूई जियानत आबी वसीलन बाबत 4 टास्क फोर्स भी जोड़ी व्यू। वडे वजीर सेहत मुराद अली शाह की सदारत हेठ सिंध काबीना के इजलास दौरान अहम फैसला। तालीमी बोर्ड के चेयरमैन की उम्र की हद 55 मां वधाए 63 साल मुकर कई वही। सिंध सेक्रेटरिएट वजीर अला सेक्रेटरिएट सिंध असेंबली ए गवर्नर हाउस के मुलाजमन ला सेहत इंश्योरेंस वारी सहूलत में वाह की भी मंजूरी डिनी वही। वडे वजीर पारा सूबे में गुटको ए मावा विक्रो कंदड़न खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी हिदायत। वफाकी हुकूमत जा इतिहादी नायों नई मरकजी हुकूमत में शामिल आयों। पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हकीकी आए। अवाम के खबर आए तो केर फार्म 47 ते इख्तियार में आयो। शर्जील मेमण चयो आहे त असां रुगो जमहूरियत लाइ वफ़ाक खे सपोर्ट कयो आहे। पंजाब में ज़िलाई सतह ते मोटरवेज़ ठही रहिया आहिनि। सिंध में जायज़ मोटरवे बि न पियो ठाहियो वञे। आज़ाद कश्मीर में पीपी अक्सरियत सां कामयाबी माणींदी। समूरो पंजाब बरसात में बुडल आहे पर क़ौमी मीडिया कुझु बि न पई ॾेखारे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां यह मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहां वहां। GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576
4: जी हाँ 2315525786
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: तरक़ीअ सां ॻंढियल आहे। ख़िते में अमन जे क़याम लाइ पाकिस्तान जो किरदारु दुनिया जे साम्हूं आहे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ऐं इसहाक़ डार जूं कोशिशूं साराह जोगियूं आहिनि।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो,
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हा, 2315525786।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: It's 8:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज. मातली के हो तो आवाज भी मातली की है.
4: सुनते रहो GAFM 90.4.

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: भारत मुलविस है, पाड़ेसरी मुल्क के बेसमझाने की कोशिश कर रहा हूं। बलोचिस्तान बाबत वर्कशॉप के खिताब कंदे वजीर आजम अफगान रजीम दहशतगर्दन के रोकने में नाकाम वयूं आहिन। सभी के गड़ी दहशतगर्दी जो मुकाबलो करणो पवो। बलोचिस्तान की हुकूमत सदाई वफाक की मजबूती लाय कम किया है। बलोचिस्तान की तरक्की मुल्की तरक्की से गंढियल है। खिते में अमन की क्याम लाय पाकिस्तान जो किरदार दुनिया के सामूँ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इसहाक डार जो कोशिशों सराह जोगियो।
2: वे डेटा सेंटर स्काई 47 त्राक्रम हाई वन जो इफ्ताह कर छो। डेटा सेंटर क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा होस्टिंग मसफराम कंदो। सेंटर हथरादू सहादत हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जो घुर्जू पूरी करने की सलाह। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ तमारका हक में कामयाबी मुल्की तारीख जो अजीम लम्हो हो। चैलेंजेस जो हौसले से मुकाबलो कर मारका हक जड़ा तारीखी कारनामा जन्म वा लागीतो मेहनत अड़न अजीम मनसूबन के हकीकत जो रूप दीदी है। स्काई 47 जड़ा मनसूबा पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जमानत है।

0: इनको कश्मोर ना समझना, ये कश्मीर है, कश्मीर और है, मीरपुर खास नहीं है। समझते हो या नहीं समझते? क्या किया आपने आजाद कश्मीर के लिए, क्या किया बताओ मुझे जरा। मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। ये नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए और लड़ाई मार कुटाई नहीं होनी चाहिए, ये नोक झोंक होनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, मैं मंशूर भी अपने साथ लेके आया हूँ आजाद कश्मीर के लिए। हमारी अवलीन तरजीह इन नौजवान को तालीम देना होगी, तालीम। यहाँ स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटियां बनेंगी।
1: बिलावल साईं कावड़ न कजो, ही कश्मीर न पर कश्मीर, ए मीरपुर खास न पर मीरपुर है। सियासत में हल्कन फुल्कन जुमलन की डेवट थे घुर्जे पर वेढ़ न थे घुर्जे। नूली खां सवाए भी कहें बे कश्मीर लाए कुछ भी ना है कयो। मीरपुर समेत समूरी कश्मीर की तकदीर बदलाए छदींदी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो मीरपुर में चूंड जलसे के खिताब। नवाज शरीफ चयो तो आजाद कश्मीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होजन घुर्जे, दिल ए कैंसर जो अस्पतालू भी कायम थे घुर्जन। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज खिताब कन्दे चयो तो आजाद कश्मीर की चूंड में नून लीग भरपूर नमूने कामयाबी मानींदी। कश्मीर में सब कुछ है, रुगो एक ही खोट है तो नवाज शरीफ की हुकूमत न है। कश्मीर में वसीलन ए जज्बे की खोट न पर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की खोट है। आजाद कश्मीर में नून लीग सभी का गोए खड़ी वेंदी।
2: फितनतुल ख्वारिज जे दहशतगर्दनि जो ख़ैबर पख़्तूनख़्वा इलाइक़े अटाक में पुलिस जे रस्ते खुदाणो हमला, 17 जवान शहीद। सिक्योरिटी फोर्सिस जी वक़्त ऐं असलाइती कार्रवाई दहशतगर्दनि जा नापाक इरादा नाकाम बणाए छॾिया। जवाननि ग़ैर मामूली जुरत ऐं पेशेवरानी महारत सां फरार थींदड़ 12 फारसियुनि खे जनम भेड़ो करे छॾियो। ISPR मूजिब दहशतगर्दनि बारूद सां भरियल गाॾी चेक पोस्ट जी हिफ़ाज़ती भित सां टकराए छॾी। नतीजे में 15 बहादुर जवाननि शहादत जो जाम नोश कयो। शहीद थियलनि में 12 फ़ौजी जवान, पुलिस अहलकार ऐं बेले खाते जो हिकु आफ़िसर शामिल आहिनि। ॿियनि देश

0: गतन जी गोला ऐं हाथ में लाए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी आहे।
1: सदर ऐं वज़ीर आज़म पारां टोंक में सख़्त गॾियल चेक पोस्ट ते हमले जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत। ॿारनि दहशतगर्दनि खे मारण ते सिक्योरिटी फोर्सिस खे ख़िराज तहसीन पेश। हमले में शहीद थियल बहादुर जवाननि ऐं अहलकारनि खे बि भेटा पेश। पोइरनि लाइ सब्र जी दुआ। सदर आसिफ ज़रदारी चयो आहे त अहिड़ा अंसर पाकिस्तान जे इलाक़ाई ऐं आलमी अमुन जी क़याम वारनि कोशिशुनि ते राताहो हणणु चाहिनि था। दहशतगर्दनि जे नापाक इरादनि खे कामयाब थियण न ॾिनो वेंदो। क़ौम पंहिंजे बहादुर जवाननि ऐं अहलकारनि जूं क़ुर्बानीूं कॾहिं बि न विसारींदी। वज़ीर आज़म जो चवण हो त हू पाक सरज़मीन तां दहशतगर्दी जे मुकमल ख़ात्मे ताईं सुख सां न विहंदा। दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ जंग जारी रखी वेंदी। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ऐं सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह पारां बि टांक में गॾियल चेक पोस्ट ते हमले जी मज़म्मत।
0: ईरान इराक ज़रिए अमरीका जी जंग बंदी वारी आछ रद्द करे छॾी। अमरीकी अख़बार न्यूयॉर्क टाइम्स जी दावा। अमरीकी अख़बार मौजिब इराकी वज़ीर आज़म अमरीकी दौरे तां वापसी बाद ईरान जो दौरो करे ईरानी क़यादत खे अमरीका जी जंग बंदी वारी आछ बाबति आगाह कयो। ईरानी अख़्तारनि जवाब ॾींदे चयो त आछ जी जंग बंदी क़बूल न हूंदी। अमरीका सां ॻाल्हियुनि लाइ पहिरियां ई सालिस मौजूद आहिनि। आछ जी जंग बंदी सां अपना हर रोज़ो मसलो हल न थींदो।
1: अमरीका ईरान ते हमला तेज़ करे छॾिया। वधीक 4 शहरी शहीद। खोज़िस्तान, अहवाज, बंदरबास, करमान ऐं कशम ते हमला कया विया। सेंटकॉम मूजिब ईरान जी दिफ़ाई सलाहियतुनि ते बि हमला कया विया आहिनि। ईरान जो बि अमरीकी अॾनि ते जवाबी वार। बहरीन ऐं उर्दन में अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। पासदारान इनकलाब मूजिब बहरीन में अमेज़ॉन जो डेटा सेंटर तबाह कयो वियो आहे।
0: नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डारज़ी किर्गिस्तान में ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास अराग़ची सां मुलाक़ात। बितरफ़नि लाॻापनि समेत ख़िते जी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल। इसहाक़ डार पारां ख़िते जी ताज़ी सूरतहाल ते ॻणिती ज़ाहिर। इस्लामाबाद माहिदे ते अमल लाइ ज़ोर भरियो। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास अराग़ची पारां ख़िते में अमन जे क़याम लाइ पाकिस्तान जी सिफारती कोशिशनि जी वाखाण। ॿिन्ही अॻवाननि जो मौजूदा सूरतहाल ते राब्तनि में रहण ते इतफ़ाक़। अब्बास अराग़ची चयो आहे त अमरीका जी सिधी रीत मुदाखलत आपना हरमुसी सलामती के खतरे में विधो आहे। इस्लामाबाद माहिदे बाद अमरीकी जुमलनि साबित कयो त वॉशिंगटन माहिदा टोड़ींदड़ आहे।
1: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा खे 4-स्टार जनरल जे उहिदे ते तरक़ी ॾेई छॾी। तरक़ी बाद लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड मुक़रर। आमिर रज़ा खे 4-स्टार जनरल जे उहिदे ते तरक़ी मिलण ते वज़ीर आज़म पारां वाधायूं। नयूं ज़िमेवारियूं मिलण ते नेक ख़्वाहिशनि जो इज़हार।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज।
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: छावां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
6: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पो हाने खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331252576।
6: जी हाँ, 2315525786।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।